0: nganungone mathe brashtu
1: oya
0: kari mashisha danyebe
1: nya kase miyu ine midi nga kapchimdu
0: janta nga charsha nga kapchi semiyu ine nga kapchimdu
1: ओयांग रंगे ने सेवा गोछु मिदु नेसना रंगा ले छुंगा मनि छब यो मारी गतम दो छबता कुंगम छबियु युनचे केमे रंगे सुसो गब यु बता छबे फम सेन ताताजी
0: नेसना जितों सादी दमजु छिता छले जिनो छिसि माजी ति गब यु मे मातो सिनता दंग पछि आयो माजी रंगे सेके दिगे सेनि गा ल्यो तो छिरजु छि वारे रंगे सुसुसुआ खाते छेतु को माची ला, ना थिवे खाते छेतु माची, रंग सेम्टिंग मिटी लेटों छेतु को माची, ना इचाई, रंग लेटों छेतु मिटो, यामे नंगा रानी, जेंसु चेनी, तम्बु तो सुईक्यू तो डाटो, ये चेना, माची, कहीं से नंगा लोचुंगुरी, रंग को याक तुसु योजी, हम्म